0: ये राहुल तो यहाँ नहीं है।
1: अरे वो भी मिला, क्या पर नहीं है? दो मिनट बाद की एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो? जाकर ढूंढो क्या प्लीज।
0: ओह गॉड, मैं अभी आया।